صدق الله العظيم. रोशनी में रोशन चेहरे जमाए, लेकिन मुझे एक छोटा सा गिला है। मैंने साउथ अफ्रीका में जहां पर भी सलाम किया, जवाब बड़ा तगड़ा आया। आप लोग बहुत थके हुए हाँ, थके हुए ना, कोई मालशी बुलाएं जो गला दबाए थोड़ा सा। मैं फिर सलाम, वैसे तो हम लोग कजा के ज्यादा आदि हैं, मैं फिर सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इंग्लिश तो आप हज़रात को आती है सबको माशाल्लाह, बोले ना आती है ना, मुझे नहीं आती। अगर मैंने इंग्लिश में शुरू किया ना आपको समझ में आएगा ना मुझे समझ में आएगा। अलबत्ता नशीद कुछ मुझे फरमाइशें की गई हैं कि ये वाले भी पढ़ें वो वाले भी, बहुत सारे हजरात तशरीफ फरमाए हैं, पुराने पुराने चेहरे नजर आ रहे हैं। हम तो 17 तारीख से जो वेंडा से स्विच ऑन हुआ था वो नॉन स्टॉप अभी चल ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी खुशी हो रही है। एक मुनज़्ज़म तरतीब है रेडियो इस्लाम की, मौलाना सुलेमान साहब भी तशरीफ फरमाए हैं, मौलाना हबीब साहब भी हैं, अल्लाह इन हजरात की खिदमात को कबूल फरमाए, इनको और हिम्मत अता फरमाए, और जो ये काम कर रहे हैं अल्लाह इसको पूरे आलम में फैलाए। हम बड़े ज़माने बाद इस काम में आएंगे, लेकिन क्या ही मज़ा हो गया बहुत जल्दी, क्योंकि मैं इस चीज़ की कमी को महसूस करता हूँ। कुछ जगहों पे हम जाते हैं तो हमारा मीडिया पर कोई चैनल है ही नहीं, तो लोग कादियानियों के चैनल देखते हैं, हाँ कादियानियों के चैनल देखते हैं, और उससे दीन को सीख रहे हैं, क्या सीखेंगे बताएं। लिहाजा हर मैदान में होना बहुत ज़रूरी है, अल्लाह ऐसे अफराद तैयार फरमा दे। तो मैं इब्तिदा करता हूँ, बहुत सारी फरमाइशें हैं और आजमाइशें भी हैं कि ये वाली भी पढ़नी है, और फरमाइशें भी माशाल्लाह जिस जिस मस्जिद में हम गए वहाँ वाले साथी करते हैं कि ये वाली भी सुनाए ये वाली भी। तो आप हजरात को इंशाल्लाह फरमाइशें भी सुनाएंगे, कुछ आप मेरे साथ थोड़ा पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह। मेरा मिजाज सादा सा है, मैं कहता हूँ जब मैं पढ़ूँ भाई मेरे साथ मिल के पढ़ो इंशाल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात तो जानवर ने भी सुनी, जानवरों ने सुनाई भी, क्योंकि हमारे नबी रहमतुल्लिल आलमीन, रहमतुल्लिल मुस्लिमीन फकत नहीं थे, रहमतुल्लिल आलमीन थे। तो मैं इब्तिदा करता हूँ, ये मैंने पीटर्सबर्ग PMB ऐसे याद हो गया, PMB में शुरू किया था इससे, तो वहाँ साथियों का बड़ा ज़ोक था माशाल्लाह, यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हम सब का मिल बैठना कबूल फरमाए। एक शायर सुबह सुबह फजर के बाद वॉक कर रहा था, तो बाग में गया गार्डन में, तो वहाँ बैठा तो चंद अशआर लिखे और कहने लगा, बाग में जब मैं गया, बताने लगा कि मैं जब गार्डन में, बाग गार्डन में,

sallallahu. मैंने सोचा तो नहीं था इन कलामों से शुरू करूंगा लेकिन आप हजरात के सामने बैठ के इन्हीं कलामों से शुरू कर दिए और बहुत सारे व्हाट्सएप आए हैं मैसेज आए हैं कि अनस भाई वो वाली नात जरूर पढ़नी है कौन सी वाली वो वाली तो मैं सोच रहा हूं आपको शुरू में ही वो वाली सुना दूं कौन सी है वो वाली हाँ अब तो ये भी सुन लिया होगा ना आप लोगों ने लाइव तो वो वाली जब पढ़ूंगा मेरे साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह अशार बड़े प्यारे हैं और बड़े मीठे हैं मैं कोशिश ये करूंगा कि सिर्फ अशार सुनाऊं दरमियान में गुफ्तगू ना करूं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम अशार पढ़ सकें आज हम सुबह एक जगह थे एक स्कूल में थे कुर्तुबा में कुर्तुबा इस्लामिक अकेडमी माशाल्लाह वो बच्चों को जब ये कलाम सुनाया इतने शौक से सुन रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह तो उम्मीद है आप हज़रात भी मेरे साथ पढ़ लेंगे आप बच्चे तो नहीं है बच्चों वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो मेरे साथ मिल के कहें

लेंगे इंशाल्लाह, भरपूर आवाज में कहे इंशाल्लाह। साउथ अफ्रीका में तो ईमान वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिस काम पे खड़े हो जाएं अल्लाह आपको कामयाब करता है, कहो इंशाल्लाह।

ये जो कलाम है नबी जी प्यारे नबी जी, सुना है ना कुछ लोगों ने तो शायद। ये मैं मस्जिद नबी से निकल रहा था, गाड़ी में था, फजर के बाद रमजान का महीना था, मैंने ऐसे ही गाड़ी में पढ़ ली तो किसी साथी ने उसको रिकॉर्ड कर लिया और वायरल हो गई। फिर बहुत सारे नाथ खानों ने पढ़ा, अच्छे से अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। तो मैं मलेशिया में था, एक जगह मैंने ये नात पढ़ी, तो कुछ साथी हम बैठे थे नाश्ते में, तो एक आलिम हमारे साथ बैठे थे, वो कहने लगे कि मेरे एक दोस्त ने ख्वाब देखा, ख्वाब में देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, एक गाड़ी है उसमें बैठे हैं, और अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन भी हैं, और कहा मैं भी उस गाड़ी में हूँ। वो गाड़ी यूँ ऊँचाई पर जाती है और अचानक वो गाड़ी ख़राब हो जाती है और वापस आती है, रिवर्स, समझ रहे हैं, रिवर्स आती। तो मैं परेशान होता हूँ कि गाड़ी कहीं गिर ना जाए, तो मैं उतरता हूँ कोई ब्लॉक, कोई पत्थर मिले टायर के नीचे रख लूँ, तो मुझे नहीं मिलता, मैं इतना परेशान होता हूँ। तो गाड़ी की तरफ देखता हूँ तो गाड़ी खड़ी भी हो जाती, खुद ही रुक जाती है। तो करीब आके देखता हूँ तो टायरों के नीचे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली का सर है। तो उठ के कहते, मैंने कानों को हाथ लगाया, कहते मैं सोचता था काश मैं हुजूर के दौर में होता, मैं ये करता, शायर कहते ना मैं ये करता, मैं कहते नहीं नहीं ये सहाबा का ही जिक्रा था। हम भी कहते ना काश हुजूर के दौर में होते, तो मुझे बताओ अगर हुजूर अभी होते तो हम किस हाल में। बस अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है, वो सत्तार है, अल्लाह ये पर्दा क्यामत के दिन भी रखे। बाहर की बड़ी प्यारी नात है, थोड़ा मेरे साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अगली बार जब मैं आऊंगा ना सारी नात पढ़ रहे होंगे, कम अज कम हर मस्जिद में कुछ साथी तो पढ़ने ही वाले हैं ना, हम तो मिल के कहें।

0: माशाल्लाह। हाँ, ये बात सच है, हकीकत यही है, नबी आपको मैंने देखा नहीं है। एक वजीफा बता दूं, आपको भी हुजूर का दीदार नसीब हो जाएगा इंशाल्लाह, पक्की बातें करेंगे। वो कसीदा बुर्दा शरीफ में एक शेर आता है ना, हुवल हबीबुल लदी, पढ़ो, तुर्जा शफाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवाली मुक्तहिमी। जो कसरत से इसको पढ़ेगा उसे हुजूर का दीदार नसीब होगा इंशाल्लाह। बर्खास्त
1: करेंगे,
0: बस कर दें इंशाल्लाह।
1: तो हजरत, बहुत से लोगों ने वो मेरी उल्फत में वो दरख्वास्त की, इसलिए कि वो समझते उसके मायने को बगैर तर्जुमान के।
0: तो समझ तो सारे ही रहे हैं माशाल्लाह। मेरी उल्फत, चले मिल के पढ़ते हैं, मदीने का जिक्र करते हैं। हाँ, कुछ लोग खुश हो गए माशाल्लाह, उठ उठ के बैठ गए दोबारा। बड़े प्यारे अशआर हैं, मिल के कहें।

0: और बड़ी प्यारी बात
1: एक है जन्नत तेरी एक है हुजरा तेरा
0: अल्लाह हजरत एक बात बताऊं मैंने ये नात बिल्कुल रोजे की जाली के सामने बैठ के सुनाई है 2012 में एक वाकया हुआ था हज में बड़ी बारिश हुई तो कुछ काफले रुक गए मदीना में हम भी उसमें थे रात 1 बजे हम मस्जिद नबवी आए बड़ी बारिश थी मेरे साथ कराची के रफी खटक साहब थे मक्की मस्जिद के तबलीगी हजरात में से एक इश्फाक भाई थे तो वहां कोई भी नहीं था नशुरता था नशुरती यल्लाहाज कुछ नहीं था तो उन्होंने वहीं बिठाया और कहा नात सुनाओ अल्लाह जब मैं पढ़ता हूँ मुझे मंजर याद फिर मैंने ये शेर वहां पढ़ा उम्मीद है अब सुभान अल्लाह तो आएगी इंशाल्लाह वो शेर क्या था

0: सल्लल्लाहु।
1: अच्छा ये नात खुद मुझे अच्छी लगती है, एक शेर मैंने भी इसमें डाला टूटा फूटा। मैं जहाज में था, रात की फ्लाइट थी, खिड़की का पर्दा हटाया तो चांद नजर आया, 14वीं का बिल्कुल करीब। मैंने बेल बजाई, मैंने कहा पेन कॉपी मिल जाएगा, तो उन्होंने दे दिया, अल्लाह जजाए खैर दे। तो मैंने एक शेर लिखा, उस चांद से मुकाबला कराया। हो नहीं सकता, हमारे नबी पूरी कायनात के चांद है सल्लल्लाहु। लेकिन एक शेर बना था, अच्छा बना, आपको समझ में आए तो सुभान अल्लाह कह देंगे, नहीं समझ में आए फिर भी कह देना भाई, तुम्हारा क्या जाता है। वो शेर क्या था,

0: Last one now.
1: One more creation.
0: Măsurați de casa e de un mera în de la ce pasu că n-am avut tot. Ia fir cu orică la
2: măsurat. Ladies first. लेकिन अभी आखिर में, लेकिन मेरे दिल में आ रहा है कि कुछ साथियों ने कहा है माँ वाली सुनाए, माँ वाली सुना दे भाई। मैंने माँ पे भी पढ़ी है, बेटी पे भी पढ़ी है, बेटियों पे बहुत पढ़ी है, लड़कों पे नहीं पढ़ी। और आपको पता है क्यों नहीं पढ़ी? सवाल ही नहीं पैदा होता। बाहर के ये जो कलाम है ये इंटरनेट की दुनिया में 200 मिलियन प्लस पे है, उससे भी बहुत आगे। मैंने ऐसे ही पढ़ा था। इसमें एक वाक्या पेश आया था हमारे पाकिस्तान में कराची में। एक डॉक्टर साहब ने अपनी वालदा को ओल्ड हाउस में छोड़ दिया, ओल्ड एज होम छोड़ के आ गए। अब माँ फोन करती रहती, ये काटता रहता, फोन करती ये नहीं उठाता। थोड़ा जमाना गुजर गया, ओल्ड हाउस वालों का फोन आया कि तुम्हारी माँ का आखिरी वक्त है, वो कह रही एक बार बस देख लूं अपने बेटे को। तो ये डॉक्टर कहने लगे पक्की बात है? देखो यार, इतना तो दुनिया ना सिखाओ कि हमें ही बोझ समझने लगे। पक्की बात है मेरे पास पेशेंट बैठे हैं, लेट ना हो जाऊं। उन्होंने कहा मरने वाली है। तो ये चले गए हॉस्पिटल, तो देखा वहां वाकई माँ का आखिरी वक्त है। तो माँ को कहने लगा अम्मा कोई खिदमत? दिल हुआ तो हो गया, वो कैसे बोल देते हैं। तो माँ कहने लगी आह बड़ी मार है ना, आंसू निकले कि शुक्र है तू आ गया। फिर मां कहने लगी थोड़ी देर बाद कि बेटा इस ओल्ड हाउस में पंखे ही नहीं है, पंखे तो लगवा दो। तो बेटा कहने लगा अम्मा मुझे पहले कहती ना, मैं ऐसी लगा देता। मां ने कहा बेटा तू फोन ही नहीं उठाता था, मैं कैसे बोलती? मैं तो आज ना बोलती तुझे, मुझे डर लग गया, मैं इसलिए बोल रही हूं। तो बेटे ने कहा किस बात का डर लग गया? तो मां ने कहा ओहो नौजवानों सुनना, मां ने कहा मुझे इस बात का डर लग गया कि कल को कहीं तेरी औलाद तुझे यहां लेके आएगी। मैंने तो जैसे तैसे गुजार दी, तू मेरा लखते जिगर है, तुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं है, अपनी तैयारी करके आना जैसी करनी। जो नौजवान आज मां बाप के आगे खड़े हो रहे हो, तुम अपना फ्यूचर खुद तैयार कर रहे हो, तुम्हारी औलाद बिल्कुल यही करेगी। और जो माँ बाप औलाद की दीनी तरबियत नहीं कर रहे वो फिर ऐसे वाकयात के लिए तैयार रहे। तो इस नज़म में एक सबक है, अल्लाह उससे हमें सबक लेने वाला बनाए। शायर की जबानी सुने।